0: छोड़ो मेरी साड़ी।
1: छोड़ो मेरा हाथ।
0: मैं कहती हूँ छोड़ो मेरी साड़ी, छोड़ो मेरी साड़ी।
1: पहले मेरा खत वापस करो।
0: क्यों?
1: शर्म नहीं आती दूसरों के प्रेम पत्र पढ़ती हो?
0: शर्म नहीं आती दूसरों को प्रेम पत्र लिखते हो?

0: दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक हसीन इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक ना हो तो मोहब्बत ना हो, शायरी ना हो, संगीत ना हो। अभी जो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, कभी उसमें एक आवाज और भी शामिल थी। उस आवाज की मलिका नेहा आज इस वक्त हमारे बीच हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों की तरफ से उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो एक बार फिर मेरा साथ देकर इस अधूरी गजल को पूरी कर दें और शाम को अमर कर दें।
1: ये क्या कह रहे सागर?

ये कैसा असर है, न काबू में दिल है न बस में नजर है, जरा होश आले चले जाइएगा, जरा

मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, और वो ही होता है जो मंजूरे खुदा होता है।

0: ऐसे मत देखो, मेरा दिल धड़कता है।
1: दिल, हाय मेरा दिल, तेरा दिल, दिल से दिल।

पंचम से एक परिचय वो था जिसे मैं 30 साल जिया और भरपूर जिया हूं पूरी सरगम के साथ। संगीत के तो सिर्फ 7 ही सुर हैं मगर पंचम की शख्सियत में बेपनाह सुर थे और सारे के सारे हमने एक साथ जिए। अब ये एक और परिचय है उसकी चुप का जो तभी बीतेगा।

ये गाना लता भाई ने भी गाई और किशोर दा ने भी गाया। मैंने जब ये गाना सुना है तो पहले किशोर दा ने कहा कि नहीं भाई ये गाना तो मेरे मुझसे होगा नहीं, मैं गाऊंगा ही नहीं, तुम लता को पहले रिकॉर्ड करो। वो लता भाई को जाकर रिक्वेस्ट कर रहे शी सैंग दिस सॉन्ग। मैंने कहा कि ये शिवरंजनी राग है, हमने कहा राग की ऐसी की तैसी, मुझे ये गाना सुनाओ मैं बायट करके वैसे ही गाऊंगा। तो उन्होंने वो गाना सुना और सुन के कम से कम 7 दिन तक सुने, और जिस दिन आके गाए ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सीख के गाए, लग रहा

0: चलते चलते ये मुसाफिर देखो कहाँ चला गया। 1955 या 56 की बात है, महालक्ष्मी स्टूडियो में मुझसे ऑटोग्राफ लेने आया था, शर्ट और शॉर्ट्स में था। मैंने सुना था पंचम बड़ा शरारती लड़का है, इसलिए मैंने बड़े प्यार से लिखा बदमाशी छोड़ो। उसके बाद 1961 में मिला अपने पहले गाने की रिकॉर्डिंग के लिए, वही उसी स्टूडियो में। गाने की पहली लाइन सुनते ही मुझे एहसास हुआ कि पंचम आगे चलकर बहुत बड़ा संगीतकार बनेगा। मेरे इस ख्याल को पंचम के संगीत ने साबित कर दिया।
1: मेरा पहला गाना छोटे नवाब फिल्म का था और उसमें दीदी मतलब लता जी खुद गाई थी, एंड शी वाज सो सिंपल।

0: श्री आर डी बर्मन जी, हमेशा इंस्पिरेशन उनसे हमने लिया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स बहुत किए लाइफ में, कई इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किए, जैसे 12 स्ट्रिंग गिटार, मादल, बेस गिटार। एक बार इस इंडस्ट्री में म्यूजिशियनों की स्ट्राइक हो गई थी, कोई म्यूजिशियन बजा नहीं रहा था,
1: किसी को गाना रिकॉर्ड करना था। तो देखिए इंस्पिरेशन कैसे काम आती है। पंचम दा ने गाना रिकॉर्ड किया, वो गाना बहुत चला और उसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो उसमें जो म्यूजिक के इंटरलूड्स हैं वो कुछ नहीं है, रिदम चल रहा है, एक आलाप जैसी वॉइस डायलॉग बोलती है, एक इंजन का इफेक्ट दे दिया।

0: गजरा।
1: आरडी बर्मन की बात कर रहा हूँ, जिसको पंचम प्यार से बोलते थे। वो एक ऐसा स्टाइल लेके आए जिसमें बोल भी है, जिसमें रिदम भी है, जिसमें ऑर्केस्ट्रा भी है, और जिसमें एक

सीताराम सत श्री अकाल जय गुरु दत्ता साई राम अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. It's a beautiful Saturday, of course, counting down the hours as the exhibition for 2026 closes its doors. Anybody heading down to the

0: हाल कैसा है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ, आ।
0: अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन
1: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप क्यों जाए।